निर्मला हम आप गुण यारे, हर शरणागत राख लेहो मूड मुग्ध निस्तारे। सहज आनंद सदा गुरुमति हर घर मन त्याया, सज्जन घर प्रापाया, कर सोई लागाया।

किरसानी किरसान करे, लोचे जी ओलाए, हल जोते उदम करे, मेरा पुत ती खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे, हर अंत छिड़ाए, मैं मूर्ख की गद कीजे मेरे राम, गुर सदगुर सेवा हर लाए, हम काम रहाओ, ले तुरे सौदागरी सौदागर तावे, तान खटे आसा करे, माया मोह वधावे, त्यों हर जन हर हर बोलता, हर बोल सुख पावे, फिर संचे हटवाणिया बेहाड़ कुमाए, वो चूड़ पसारा चूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जान हर तन संचया, हर खर्च ले जाए, त्यों माया मोह कुटा।

जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया के।

दैद चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गंडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो जा नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडाहे पर साधु अंजलि पुन वडाहे कड नौत पुन वडाहे रहाओ सागत हारा साधना जानिया तिन अंतर होम में कंडाहे ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पावे जमकार सहे सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रातेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही शुभ मंडा हे गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है।

प्रीत राम राय की, गुरमार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया, मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हिरदे नाल दिखाया, सहज आनंद पया मन मोर, गुर आगे आ विचाया, हम अपराध पाप कीने, सजुटी चोर चुराया, आप नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड़भागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिवलावे, गुरमुख हर लिवलावे, रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल धोवे पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हिरदे गुरमतरा मरसायण, जेवा हर गुण गावे, मन रसक रसक रस आघाने, फिर बोर न पूख लगावे, कोई करे उपाप अनेक भो तेरे, बिन कृपा नाम न पावे, जन नानक हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दिरड़ावे, राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम करामा, संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वड़पागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गोर हारंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो, वड़पागी मिल सूड सुजानी जियो, मेरा मन तनहा रंग पिन्ना, आवो संतो मिल नाम जपाहा, वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा, तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी खा जियो, मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो, पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो, हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो, मेरे मंत्र प्रेम लगा कर टोले जियो, मैं मेले मित्र

तू है मेरा गहना, तुझ निपुन जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सागुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर शोक विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोबन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवाद होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबन धान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेश सुखी हो रही है। ऐसा दाता सुखगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रखाओ जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाइए, प्रे संगन पावे बो जोन पवाइये। सील संजम प्रे आज्ञा माने, इस नारी को दुख ना जमाने।

जाको रास हारस आयो तो अनस नही लपटायो। जाका कहे या दरगह चले सो किसको नदर ले आवे तले। जाका सब कुछ ताका होए नानक ताको सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुसम कर जापे ताको काड़ा काम ब्यापे। तेज आनंद घर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय हरहाओ। जाके चिंत बसे मन आए ताको चिंता कत हो नाहे। जाके बिनस्यो मन ते परमा ताके कछु नाही डर जमा। जाके हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ताके सगल निधाना। गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन मैं थाना गुर प्रसाद किने विर ले जाना। तय कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिसले पुंचा। हरहाओ अनहत बाणी पान निराला ताकि तुन मोहे गोपाला। तय सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता। हरख अनंत सोख नहीं दिया तो घर गुरु नानक को दिया। गौड़ी महला पंजवा कमन रूप तेरा आराधो कमन योग ताया ले साधो। कमन गुण जो तुझ ले गावो काबल मोर पार ब्रह्म रिझावो। रहाओ कमन सो पूजा तेरी करो कमन सो विद जिद पवजल तरो। कमन ताप जिद तपिया होए कमन सो नाम होमे मलख होए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहाल जिस कर कृपा सदगुरु मेले दयाल। तेसी गुण

आपन नहीं पाई, इष्ट मीत या बाप न माई, सोए ना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुर बख्श मनाया, तिस का सब किश

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जद का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरजी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रखाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर चो लिम लागी।

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मल ले जाई रखाओ हर की कथा हृदय बसाई मन बांझत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कर दिवसे भगवान कहो नानक से ही जन पूरे जिना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी मोहल्ला पंजवा खांदा पैन दा मुँह कर पाए तिसनु जो है तू तरमराए तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना होर जन्म परमे बोजू न रहाओ सागत की ऐसी है रीत कुछ करे सगल विपरीत जियो प्राण जन मन तन तारिया सोई ठाकर मनो बसारिया बदे विकार लिखे बोकागर नान कुदर कृपा सु

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे,

साई मीतला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ, खुद बिन करी ना जीवना रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी, हस आलम्बन देव प्रभ घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मथोरिया तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला कवन विधि विचार, शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे, तो प्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंद को तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक भजे हितरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सुध पावे, हरहाओ बन मन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, जोगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी घर संत मिलाही, जन्म

पायो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर में ले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौ लो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटया तो आनंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जौ लो मेरो मेरो करतो तौ लो बे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौ लो डान परे पोट डार गुर पूरा मिलया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरमल त्याग्यो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आगे ओ रहाओ मान अवमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरकना आपत दुखा रंग ठाकुर लागे हो बास बासुरी एक स्वामी।

मित्र सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो मसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सा बास गौड़ी माज

त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक यो खेल कठिन है, किन्हु गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ, काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तान साचा कर मान्यो, जो सुपना रहे नाई, जो दिसै सो सगल बिनस, जो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथया, रहो राम सरनाई, गौड़ी महला नामा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, आहे निस मगन रहे माया में, तो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, हे भेद आप बंधावे, मृत्यु से ना जो चूक।

साधो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बन आई, गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोल।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नहीं निरठाओ, प्रेम परायण प्रीत मराओ, नदर करे ता बूझे नाओ, माया मोह सर्ब जंजाला, मन मुख चील कुष्ठ बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सा सुमाए, जमण मरना ठाक रखाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कतनी कथो न आवे ओर, गुर पुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुर्मत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तरण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबाई।

एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एक हुकुम वरते सब लोई, एक ते सब ओपत होई, रहा दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुकुम पछान, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचार है, पंच मार साच उरथार है रहाओ, जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, रस एको गृह उद्यान, करणी कीर्त कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सज जाग, पाए रच रहे न बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, होमे मारे करणी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, खेमा गई व्रतशील संतोखं, रोग न व्यापे ना जम दुखं, मुक्त पय प्रारूप न रेखं, जोगी कौ कैसा डर होय, रूख बिरख।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल भय उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना लेख पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख।

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, तरैयत मैर मुकदम सिकदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अभरो काल कूड़ सिर मारे, निचल एक सच्चा ससोई।

माखन नहीं रीस है। इस पर जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन आप कहो सो अपर अपारा। तब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म सुमाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आप हो जाओ। मनमुख सूतक कभे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कहे नाय। रहाओ सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे है सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण आधारा, हर जू राखो हृदय उरतारा। गुरमुख सोभा साज दुआरा, पंडित हर पढ़त जो विकारा। गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ, गुरमुख विचो होमे जाए। गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई। लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंप बहुत चतराई, जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई। आवे जावे ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना। बागजों लाए भये नित्याना, जा पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई। गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पद नामे वड्याई। सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नावे झूठी चतराई। गौड़ी महला तीजा ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथ अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हौ में मैला एव संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा दे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंदर है लपटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर सिना फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी हारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोहे अद परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़पागी। गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तेथ उपजे दे मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम घर राखे सदगुरु मिलाया। अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला। पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत न चीने बन्ने पंड पराला। मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए, हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए। पवदल डूबे दूजे पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे। विख्या राता बहु दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नितकाल संतावे। गुरमुख जम काल नेड़

पद पाईए ना मने ऐसो होए सागुर ते नाम पाईए तरम मिले प्रसोए सागुर ते जो मोह फेरे ओए प्रमदे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन यो जग परम भुलाया मोए ठगो ली पाए जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए सगुर सेवन सो सोहणे होमे महल गवाए कुदरते से निर्मले चले सतगुर पाए हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले मन परदेसिया क्यों मिल गए हर माए गुर पाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन कर हला सतगुर पुरख ते आए हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए जिथे लेखा मंगिए हर आपे लय।

दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की होमे मलहरो, किस गुर को चूला भूपाखा, मां अग्न ते हाथ दे रखा, किस गुर के ग्रह टोबो पानी, जिस गुर ते अकल कद जानी।

माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर दे निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्व सनाम।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

लाती जा। गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए, मन्यो दूर ना जाए पिराजियो, घर बैठिया घर पाए, घर बैठिया घर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुखाए। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनु आप कराए, नामो बीजे नामो जमे, नामो मन वसाए, नानक सत नाम वड्याई, पूर्व लिखया पाए।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृहबंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बसे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुह पाए मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए टहे तो टहेद अब टहे परे साजना सुरनाए दुके फाहे काटे नानक लिए सुमाए।

फिरत तू आया दुर्लभ दे कल जुग में पाया। फिर आवस चरे न हाथा नाम जपो तो कटिए फस फिर आमन जान न होई। एक एक जपो जसोई करो कृपा प्रो करने हारे मेले हो नानक बेचारे सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपे भोग रस नानक साधरवाल पौड़ी। बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मिटावे ताहू बुरा निट नहीं आवे। पद्यो आपन हो बंदा दोष देत आगे को अंधा बात चीत सब रही सियान जिसे जनावो तो जाने नांग सलोक। पय पंजन अग दुख नास मने अराध हरे संत संगजेर बसयो नांग ते ना प्रमे पौड़ी। बब्बा परम मिटावो अपना यह संसार सगल है सुपना परमे सुरनर देवी देवा परमे सिद्ध साधक भय मेवा परम परम मान खुटेताय दुत्तर महा दिखम ए माए गुरमुख परम पय मोह मिटाया नांग ते परम सुख पाया सलोक। माया डोले बहु विधि मन लपट्यो ते संग मांगन तेजे तुम रखो तो नानक नामे रंग पौड़ी। मम्मा मांगन हार ए आना देन हार दे रहो सुजाना।

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रव निर्बानी पावे खसम ता उआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोउ सोउ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर घर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मै रब रहया तान तनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हितकर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत किरपाला ओरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रवते हुआ सलोक लिख है कते ना छूटी है खिन खिन फूलन हार बक्सन हार बक्सल है नानक पार उतार पौड़ी लूण हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारने तैज ढूंढन जाए देवन हार दातार प्रभ निमख न मने बसाए लालच चूड बेकार मोह या संपे मन माहे लंपड़ चोर निंद कमह तिनहु संग बिहाय तुद पावे ता बख्स लहे खोटे संग खरे नानक भावे पार ब्रह्म पान नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त भरमे जन्म अनेक भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर वचन समाए खेमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई अंध सुख बिसराम खेप निमाही बहुत लाभ।

गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन।

कर कृपा। हम मूढ़ पापी जित लगतरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इहो श्लोक आद अंत पढ़ना, गौड़ी सुखबनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन मय मिटावो। सिमरो जास विषम पर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, इन्ने राम नाम एक आखिर। इनका एक जे जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एक दस्त हुआरो, नानको संग हुए उधारो। सुख बनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कई मन बसराम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ के सिमरन अन दिन जागै। प्रभ के सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ के सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्वनिधान नानक हर रंग। प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ के सिमरन जपता पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तरख मानी। प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझ, प्रभ के सिमरन सब के सुज। प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बेमोताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता। प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभु ना चूरे। प्रभ के सिमरन हर गुरबानी, प्रभ के सिमरन सहे सुमानी। प्रभ के सिमरन निचले आसन, प्रभ के सिमरन कमल बेगासन। प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रा सिमरन का अंत न पार। सिमर है से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन पय सिद्ध जती दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक तीन दर्द दुख पंजना,

मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जय महा भयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्कल होवै अदपारी, हर को नाम खिर महे उधारी। अनक पुणे चरण करतनी तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सरसठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग इहो जात अकेला, तै हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गद पाई है। टूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक बिघन जय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार। अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड़ पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग। जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंत तेरा को ना सुजानू, हर का नाम तय नाल पछानू।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त पुत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड भागी पाईए, संत की सेवा नाम ते आईए, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरती, पेखे सरब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बो पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिरे तिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्रमाय होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अध साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कशनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे, तोज करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, ए देही को बो साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे, जल धोवे बो दे अनीत, दुध कहां होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पातत बहु मूच, बहुत सियाणप जमका पो व्याप, अनक जतन कर तृष्ण ना त्रप, पेख अनेक अगर नहीं बुझे, कोट पाप दर्ग

सगल कटा को देव उदान तरण करावन हार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनिया तो प्रभु सदा सुमाल जिनकी ते चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी।

अंत सगल समग्री तुमरे सूत्र थारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई, पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, श्री ठाकुर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अंधे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तुत आज्ञा रख, प्रभु की आज्ञा माने मत, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत सर

हस्ती अस्वस्तरा नित्या रंग संग माया पे हस्त नित्या त्रो मो अवमान नित्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत परतरे रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर्व कार को थावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तान नहीं पर पुकारा मिथ्या बासले दिवकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सबल दे नानक हर हर नाम लय बिरती सागत की आरजा साज बिना के होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जान अनहार प्रभु परवीन बार पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आपत जावत जन्मय मरे जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रवजत नानक उन जन चरण परत करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत नबेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा वो पाप स्यान पर सगलते।

जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तेरे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साथ अरे मन मेरे तू ता स्यो रात जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जब सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रसो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वदान प्र तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुगता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अवमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रवनेरा साध संग सब हो तनबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रमहे सुमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहु तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रसो प्रसन्न सा संग सुमन सा मीत साधु कै संग महा पुनीत सा संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर साध के संग नहीं को मंदा सा संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तजे सवे आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबहू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त्या गोचर लहे साधु कै संग अजर सहे साध के संग बसे स्थान ऊचे साधु कै संग महल पहुंचे साध के संग त्रिड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए ना मन दान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग तब कुल उधार साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम आनक साध के संग सबल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेटत होत निहार साध के संग कलुखत हर साध के संग नरक पर हर साध के संग ईगा उहा सुहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बस नानक उधरे साध सुन रस साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसर साध संग सर पर निस्तर साध के संग लगे प्रामीठा साधु कै संग कड़का डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक सर पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साध की उमा त्यो गुण ते दूर साध की उमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊजते ऊची साध की शोभा मूजते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक बिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट सुमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान।

सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाहीं अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमय ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परे उपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हो सो फल ब्रह्म ज्ञानी सोबल फल। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हरे।

विचार कभू ऊब का स्पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू मां क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बह बड़ राजा कभू पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक हो ज्ञान कभू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मर्तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलया एक टाना, त्यों ज्योति संग ज्योत सुमाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुरबान। सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अब महान। तो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत। तो होवत विष्टा का जंत, आस को कर्मवंत कहावे। जन्म मरे बो जोन परमावे, तान पूम का जो करे गुमान। तो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। नानकी खा मुक्त आगे सुख पावे, तनवंता हुए कर गरबावे। तन समान का संग न जावे, बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस। पल पीतरता का हुए विनाश, तब ते आप जाने बलवंत। किन में हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी। धर्म रायत करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अपमान। तो जन नानक दर गए परवान, कोड कर्म करे हो तारे। श्रम पावे सगले बिरतारे, अंक तपस्या करे अहंकार। नरक स्वर्ग फिर अवतार, अंक जितन कर आत्म नहीं द्रवे। हर दरगे को कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे। किसे पलाई निट न आवे, सर्व की रेन जाका मन होए। को नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए। तब को सुगुना ही कोए, जब ए जाने मैं किस करता। तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत। तब लग ने चलना ही कीत, जब लग मोह मग्न संगमाए। तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे। गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहज कटे लक तो उड़तावे। तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे। ने तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे। स्वपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए। बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करामने आपे आप। सदा

तेन पुरख का उत्तम कर्मान योग करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करणे गार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए ओए सुख निदान उनहू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभु जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा।

अनद रूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे

जप जप जीव नानक हर नाव, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सोनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब पावन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख स महेशमाणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकर दे परवेश, सत निरत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकी गद होय, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक जो पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पै बिस्माद, जिन बुझत आया स्वाद, प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर के बदन पदार्थ लहे, वे दाते दो कटनहार, जा के संग तरह संसार, जन का सेवक सोवट भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक, आदि सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टपदी, चरण सस परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यामनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुजन हार को सत सब होय, नानक सत सत प्रसोय, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करन करामन तिन मूल पछानिया, जा किरदे विश्वास प्रव आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, फैते निरप होए बसाना, जिसते उपजे तिस माए सुमाना, बस्त महेले बस्त गडाई, ताको पिन न कह ना जाई, बुझे बुझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पूजा।

दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊजते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी में कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

आठ पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण करण सुमरथ जी जंत दयाल पुरख तवि ऊपर जा का हथ गुण निधान गोविंद गुर किया जा का होय अंतर्यामी प्रभु सुजान अलख निरंजन सोय पार ब्रह्म परमेश्वर सबद जानन हार संत सहाई शरण जोग आड़ पैर नमस्कार अकथ कथा न बूझिए सिमरो हर के चरण पतत उदाहरण अनाथ नाथ नानक प्रभु की शरण सरोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाए पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेशे को दृढ़ जिसका हुए उधार किल वे काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाए फलत पलत मुख उजला न पोहे तुमाय तो सुरता सो बैसनो तो ज्ञानी तनवंत तो सूरा कुलवंत सोए जिन पढ़िया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद बैस उदरे सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रव्यापना

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजी है, मलहो में कड्ढे तोय, सच वणन जय रंग स्यों, सच सौदा होए, टोटा मूल न आवई, लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया, जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी, साराही सच सालाना, सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे, सच सच्चा हरख वाले, सच सच्चा जिनी आराध्या, थे जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी ना सेवया, थे मनमुख भूड़ बेताले, ओ आल पताल मोह बोल दे, ज्यों पीते मद मतवाले, वाले,

हे जनकै बलिहारण जिन भरिया प्रभु निर्वाण जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुजान संत संग सागर तरे जन नानक सच्चा तान महला पंजवा भरके उठ पढ़ाउना मेरे घर आवो पाओ पखाला तिसके मन तन नित पाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लाव ग्रह तन सब पवित्र होए हर के गुण गाव हर नाम व्यापारी नानका वडभागी पाव पौड़ी जो तू पावे सो भला सच तेरा पाना तू सब मैं एक वर्तदा सब मैं समाना सांसनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाना नानक प्रसरणागति साध सद कुरबाना सरोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहेब सच्चा सो तनी नानक सदगुर सेव चढ़ बोहित पौजल पार पाओ महला पंजवा वाऊ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार नानक नाल ना चलनी जल बल।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई ते स्यों सब केश।

केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाईए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ, काया रत बहुरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट महारस पी जय, कबीर जी गौड़ी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन मध स्यों लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है रहाओ, पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले रग राया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती।

अब मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे काल हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ होए आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शतरपत कबहू पेघारी, सागत मरे संत सब जीव राम रसा।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ, जे कड़ राम रहया भरपूर, इनकी पाग

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। संकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खुद जो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी अहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोठ पी, रे जी न लज लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जान पर कर जातन सोही। सो साहेब रहया पर पूर, सदा संग नाही हर दूर।

चाले आप गए और न हूँ काले शाड़ को चर्चा आन न जाने ब्रह्मा हूँ को कयो न माने आप गए और न हूँ खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे आवर नभस्त आप है काने तिनको देख कबीर ले जाने राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद जीवत पितर ना माने को मुए सराद कराही पितर पी बपरे को क्यों पावे कौआ कुकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जग बिनसे

मन बौरार, माया यो व्यवहार, जैसा रंग सुंभ का मन बौरार, त्यों पसरियो पासार। नावन को तीर्थ कने मन बौरार, पूजन को बो देव कहो कबीर, छूट नहीं मन बौरार, टूटन घर की सेव गौड़ी, अग्न न दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेर न आवे, राम न तन कर संचौनी, सो तन कथी न जावे, हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार, ए सार तन कही है, जो सो प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लई है, हरहाओ इस तन कारण से संकादक, खोज पै उदासी, मन मुकंद जे बा नारायण, परे न जम की फासी, निज तन ज्ञान पद गुरदीनी, तास सुमत मन लागा, जलत अम्ब थंब मन तावत, परम बंधन पो पग, कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, तुम कर लाख कोट असवस्ती, हम कर एक मुरारी, गौड़ी जो कब के कर मुहित चनन की, लुब्ध न त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालच सियो, ते फिर गरे परे हो, भगत बेन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बेन, कही न सच रहो रखाओ, जो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत, किने न कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में, फिर काल हयो, या तान जोबन आर शुद्ध दारा, पेखन को जो दयो, तिन ही माहे अर्ग जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो, औध अनल तन तिन को मंदर, चौध ठाट ठयो, कहे कबीर ऐसा सागर तरण को, मैं सदगुर ओट लयो, गौड़ी

भगत हेत अवतार लियो हो। आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दसनाही, तब ओ नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे। गौड़ी

ना तरखर हृसय गैराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुटी नागे ऐस कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औं बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे नाम सारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई चरण ना छाडो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन कर ना विलंबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खोब ना खता न तरस जवाल आ मैं खूबतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रघाओ कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आगी आबा दान सदा मशहूर ऊहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल न को अटकावे कहे रविदास खरा चुमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बैरागन रविदास जियो काट आव काट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार रमैये सो एक बेन।

नदर करे जो कुछ करना सो कराया अवरण करना जाई। जैसा वर्त तैसो कही है सब तेरी वड्याई। काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है। आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह। आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ। होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तपताओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला। और नचना खुशियां मन माह हरहाओ। संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल। राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उठदिया नीता नीत। लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

बंद खीन खराब होवे नित कंध खान जीवन की बहुती आस लिख तेरे साध के रास एहस अंधले दीपक दे भौजल डूबता चिंत करे।

नदर करे ता सदगुरु मिले, परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा मोहल्ला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज कामना ही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसर है दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। अखर बिरख बाग पै चोखी, सिंचित भाव करेगी, सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुत नाही। कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जिनेऊ ध्यान कुसपाती। हर नामा जा जा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ। बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम सुमाल। ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर न पाल। इन्ने तत गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े बीचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश बचोर न लागे। तिलक ललाट जाने प्रवेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक। आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच ना

सब नाका सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई हरहाओ सकता सियो मारे पै वग खसमे सा पुरसाई रतन।

सोई जन जाने, हर गुण सदगी आख वखाण, जिन घर सेवया तिन सुख पाया, सहजेगी घर नाम सुमाया, तू आपे करता तेरा किया सब होय, तुध बिन दूजा अवर न कोय, तू कर कर वेख जाने सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किसी तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किसी तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किसी तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई, हमारा तड़ा रहया सुनाई, हम हरसो तड़ा किया मेरी घर टेक, मैं हर दिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिनसो तड़े करे से जागे, चूड़ तड़े कर पछोतागे, फिर ना रहे मन खोड़ कुमागे, हम हरसो तड़ा किया इसका कोई समर्थ ना है, ये सब तड़े माया मो पसारी, माया को लूजे गावारी, जन्म मरे जुए बाजी गारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी, कलयुग में तड़े पंच चोर झगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान में जाए, जिसनु कृपा करे तेस सत्संग मिलाए, हमारा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बे पावे, पराया शिद्र अटकल है अपना अहंकार बदावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म।

त्रै गुण त्याग, दुर्जन मीत सुमन ने, तुरिया गुरमेल साध विशाल ने, सहज कोबा में आसन बाध्या, ज्योत स्वरूप अनाद वाध्या, महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रेस वराती तन सुहागण नार, जन नानक बोले।

को आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मन लबटानी साह व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ साहे पठाया साहे पास अमोल रतन अमोला रास विट सुभा।

भाग हमारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रिय संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूध की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

मिल सतगुर धन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई, पाए न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई, हरहाओ टोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रह अघाए, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग बरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मोहल्ला पंजवां, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाओ जिनते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हो निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे सगल ने

पंजवा निट जी कै सदगी संगा कुदरत वर्त रूप अर रंगा करै ना चुरै ना मन रोमन हारा अवनासी अवगत अगोचर।

हर रस चोट होशे रसम माता कारमय वस्त बार उड़ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुणे अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी।

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन,

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक तिहाए तै प्रभु को।

मुखते एक बबाड़े आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी जो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सा मीता झूठा यो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खा खा मोए गवार।

परम मोह त्रो सब निकस जबका दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया आसा मोहल्ला पंजवा जन्म जन्म की मलत होवे प्राई अपना की ता पावे ईहा सुख नहीं दरगे टोई जम पुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच न सके काहू बाते आगे ठौर न पाया रहाओ किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा तहां बेगूता ते कोई न रखे ओ किस पे करे बुकारा निंद की गत तथु नागी खसमे ए वे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना संतन टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत खरा रखे निंदक दिगे रोढ़ाई आसा मोहल्ला पंजवा बाहर तोय अंतर मल मैला दोए ठौर अपने खोए ईहा काम क्रोध मुए व्यापया आगे मुस मुस रोए गोंद पजन की मत है होरा वर्मी मारी साप न मरई नाम न सुई डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र कहो तरकन लागा तत् योग ना पछाने उगर गया जैसे खोटा टबुआ नदर सरापा आया अंतर जामी सब के जाने उसते कहां छपाया कूड़ कपट बंच ने मुनियादा बिनस गया तद काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा महला पंजवा उदम करत होवे मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वस गद रख मन में एक अंकारे तेरा जान नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनगद शब्द वजावे रखाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रीझावे राम नाम जप हृदय जप मुक्ते सगल सुनावे तर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्प तरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पिखे ल सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी निरत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे आसा महला पंजवा अदम चंडाली पई ब्रह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे पाताली आकाशी सखनी लैबर बूजी खाई रे घर की बलाई अबर सखाई मूसा देख डराई रे अज के वसगुर तीनो केहर कुकर तने लगाई रे रहाओ बाज तूनिया छपरा थामिया नी करया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा हेवा अचरज लाया रे दादी दाद ना पहुंचन हारा टूपी निरनो पाया रे मार दुलीचे बैठी ले मृतक नयन दखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार नशाना रे कहो नानक गुर अम्यो पी आया रसक रसक बिगसाना रे आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगुन अपना बिरद सम्हारिया होए किरपाल माधपित न्याई बारग ज्यो प्रद पारिया गुरसिख राखे गुर गोपाल काढ़ लिये महापवजल ते अपनी नजर निहाल रखाओ जाके सिमरन जम ते छुटिए हलत पलत सुख पाईए साहस गराज जपो जप रसना नीत नीत गुण गाईए भगत प्रेम परम पद पाया साल संग दुख नाठे छिजे न जाए ही पौ ना व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंतकाल प्रपय सहाई एत उतरा कनहारे प्राण मीत हीर तन मेरे नानक सब बलिहारे आसा महला पंजवा।

मिली हदूर, चुका निहोरा सखी सहेरी, परम गया गुर पिर संग मेरी, हरहाव निकटियान प्रे से तरी, तान कडन ते शूड परी, मंदर मेरे शब्द उजारा, अंध बिनोदी खसम हमारा, मस्तक पाक मैं फिर कर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया, आसा महला पंजवा, सात नाम

काउन आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन सोवत जागे तप्रव नानक मीठे लागे आसा महला पंजवा एको एकी न निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रसाद साध के संगे हर हर नाम त्यावो रे अरहाओ सगल समगरी जाके सूद परोई कड़कड़ अंतर रव्या सोई ओबद परलो खिन में करता आप लेप निर्गुण रहता करण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा कोड़ जन्म के रे पवारे

गुरपूरे के चरण गए, कोड़ जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सम्हारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वरे आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाओ, कहो नानक और ब्रह्म पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उद सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम मखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो शरणाई, मोको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चय नाय, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब तिसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, हाथ निर्मल दास की जुगता, हरहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन कहां व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम को कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण को लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक जो प्रसरणाई, ईहां सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

सदा प्रफुल्ल काढ़ काढ़ संपट हय रे जाका अपग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े हर साल गरा।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्तनेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमें पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब सरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संत से हर घर त्याय कर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जांत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ए चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जबत मन तन सब हरिया काल मर दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन

सर्व सुख पावे, आवर कहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद प्रभ मनवासी ए रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही भली पांत सब सह सुमागी, जाकी बख्श ना मेटे कोई मन वासाई गे सचा सोई, सगल समग्री ग्रे जाके पूरन प्रभ के सेवक।

वन्यन वहंदे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई न किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार बहुजल तरबी है।

मेरा तेरा जानता तब गीते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा, जाबला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया, गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया, ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा, हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ, बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ, गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ, रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

गए वो दिसे न बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा कर नावा महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चितव चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो, एक दा तार सगल है जाजक, दूसर कह पे जावो, ओ मांगो आन ले जावो, सगल शद्र पद एको ठाकुर, कौन समसर लावो, हरहाओ उठो बैसो रह पे ना साको, दर्शन खोज खुजाओ, ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको मैल दुलपाओ, आगम आगम अगाद बोध तीमद परय ना पावो, ताकि शरण सदपुरख की सदगुर पुरख ते आवो, पयो कृपाल दयाल प्रभु ठाकुर काट्यो बंद करावो, कहो नानक जो सासंग पायो तो फिर जन्म न आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी संग चलन।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा

नटुआ ते दिखावे बहु विद जैसा है ओ तैसारे अनक जोन प्रम्यो प्रांपीतर सुखे नहीं परवे सारे साजन संत हमारे मीता बेन हर हर अनीता रे सा।

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने, छे प्रगट घर द्वारे।

कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नही राजन पागन हुक्म न साधन किस किस न चाही चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक है, एक है सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पूगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा।

नीत नीत कर बांधिए जे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिसते सुत्ता नानका जागाए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चलिया केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बीचारे, वंज करो मसूद लहो

एक गर्भ बन जाएंगे। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय बसाए न पछोताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तैसोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदार जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मानवस वस्या मन सोई। आपे दे वड़े आईया दे तोट न होई,

नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से परमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाए, आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक मना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गो सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

नाम ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर रहाओ, गुरमुख आप पछाणिया, तिनी एक मन ध्याया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, पर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोह द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो में मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की बिन नावे शोभ न होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न होए, जिन्नी नाम सारे से मुए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अनदन नामे लाए, सच कुमारे सच रहे सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमाण, नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा शब्दो ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचु आप गया नव मनिया सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है तिन मन ने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर फेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के व्यापारिये जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हरी, बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भक्ति मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम से होमे दुबदा मार, भगतां की जद पत एको नाम है आपे लए सवार, सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत निराली अलहादी जापे गुर विचार, नानक नाम है।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चलतो पेकी है नेत्र घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेत्र पावे ठाओ मीत साजन सुत बंध पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु

पाए। अंचल गया साधका नानक पैसागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे या पेटे हर राए। सुंदर सुगर सुजान प्रा मेरा जीवन दर्द दिखाए। जो जी तुते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिखाए। जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए। जो सुख दर्शन

दिया सब नी लिया, तर्मी कर्मी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गल्ली हो सोहा गण पैने, तंतन कबहू मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सब जाने, अंतर बाहर रब रहया, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे। सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह। मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम। मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम। ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे। तो गुण पिछाने ता प्रभ जाने गुणे वस अवगुण नसे। तुझ बाज एक तिल रह ना सक कहन सुन ना तीजे। नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे। सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम। हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम। मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली। एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली। कारण कारण समरसरी तार आप कार्य सारे। नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार। हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम। रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम। अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे। तन मन तेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने। नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोका।

शांत करती जा साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो भगत कर

भगत भाव यो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तेन ससदा जो हर गुण गावे। हर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सो सब किस जाने। जल थल मैयल एको सोई गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरी केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। जय जय मन तू तामदा तय तय हर तेरे नाले। मन सियाण पछोडी है गुर का शब्द समाले। साह तेरे सो सो सदा है।

दर्शन कौ बलेगारी, गुरसो प्रसन्न मिलना विछुन्ने, तन देंदी सात स्नेहा, कौ नानक संत अनंत ठाकुर के, हरसु की जे नेहा, मन ऐसा नेहो करेहो, चकवी सूर स्नेहो, चित्त

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिस भागे, मिलनहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए हान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालि आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कुतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जैसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमें चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

आनना खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे अहेनस तहरे मोन मगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पर उपे ताना अपना किया कमाना आलमल खाई सिरशाई पाई।

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे तीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना कर औगण पछो तावना सलोक महला पहला दया कपा संतोग सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना यो तुट ना मल लग ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया वह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहे नामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटिए फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे सालाही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूड़ सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा या पेवत वड़ तागे अवरा खत ले पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी।

हाथशुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पिख ना पाएंदा। श्लोक महला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्याणी है पितरी चोर करे, वड्डे हाथ दलाल के मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले, दे महला पहला, जो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस नित नित होए खुआर, सूचे ए ना आखी है बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसे आसोए, पौड़ी तुरे पुराने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया

ही करना कियो, कल आपे ही ते तारिये, देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है, आपन हथी अपना आपे ही काश वारी है। श्लोक महला दूजा, एक ने ही आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कंडिये सदगी रहे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस क्यो न आखिए जे लेखे वरते सोए। महला दूजा, सलाम जवाब दोवे करे मुंडों कुथा जाए, नानक दोवे कूड़िया थाए न काई पाए पौड़ी, जित सेवे सुख पाई है सो साहिब सदा समा।

सेवा करे ता भी पाए मान, नानक जिसनू लगा तिस मिले, लगा सो प्रवान। महला दूजा, जो जी होए सो उगवे, मोका कहे आवाओ, बीजे वेख मंगे अमृत, वेखो यो ने आओ। महला दूजा, नाल ए आने दोस्ती, कदे न आवे रास, जेहा जाने ते हो वर्त, वेखो को निर्जास, वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। साहिब सेती हुकम न चले, कही बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो होवे, नानक सिवत विगास। महला दूजा, नाल ए आने दोस्ती, वडारू स्यों ने हो, पानी अंदर लीक ज्यों, ते दा थाओ न थे हो। महला दूजा, होए ए आना करे कम, आण न सके रास, जे एक आद चंगी करे, दूजी पी वे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे पाए, होरमत तिसनु अगली, ओ वजो पे दूना खाए। खसमे करे बराबरी,

गोर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया, कामन काज जब उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया, देव करो दया मोहे मार्ग लाभो।

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटाकार अंत तऊ मरना ताते सेवियले।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई।

हंस अकेला जाई। कहेत कबीर सुनो रे संत, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जामनी हटे गुसाई। दो तो

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

तिस्त छोड़ कर दोजक स्यो मन माना। आसा गगन नगर एक मूद ना बरख, नाद कहा जो सुमाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परम हंस ले सिधाना।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच ते सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

राम रमत तिस सबके सूझे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ, दो तुके सत।

की आस करे जम निहारे ससा बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप कर हो।

आस बड़ पाग हमारा, तुर नर मुनजन कौतक आए, कोड़ ते तीस उजाना, कह कबीर मोए ब्याए चले हैं, पुरख एक भगवाना, आसा सास की दुखी ससुर की।

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई।

सब जग आन तनायो ताना अरहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरण आकाश की कर घय बनाई, चांद सूर्य दुई था।

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च

अंत अनंत अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूह ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो

देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बज क्रम रस कसे लोभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई, आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ राता, मन बिसरे प्रभ हीरे अरहाओ, बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे बिग पर संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके असली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत सुमानिया, महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कंडे कचया।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़।

हर के जान सदगुर सपुरख बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सदगुर सरनाई कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रा।

मिरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सब को दान दे प्रभ ओ है मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोह है। कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडपागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यों चित लावे अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाहीन मुए मर जावे आंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध

अंतर मैल न उतरे होमे बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। और मदे को विरला सेवक और सगले ब्योहारी हरहाओ सात वेद सिमर सब सोधे

त्यान आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल अरहाव मिल वरनारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे ती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कबहू जाई हराओ करत करत अनकबो पाती

अनेक करणी सबल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भय पूर्ण काम सास सास ना बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभु सुमरथ गुण अनक रसना क्या बखान अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण गुजरी मोहल्ला पंजवा अहं बुद्ध बहु सघन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरना।

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सदगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सत्संग दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्र स्वामी ओत पोत प्रव साथ। शरण प्रयो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदिया महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच देवनहार। अए जी जब तब संजम सच आधार, हर घर नाम दे सुख पाई है तेरी भगत परे भंडार। रहाओ सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार, जल थल तरण गगन तय नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगन ना छाया ना सूरज चंद ना

को काल नहीं जम जोह, बूझे अंतर शब्द विचार। आप तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दी जय प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे, हर जह दीजे कृपा तार। गुजरी महला पहला, अए जी जन्म मरे, आवे फुन जावे बिन गुरगत नहीं काई। गुरमुख प्राणी नामे राते, नामे गत पद।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी रखो पैज नाम अपने की तुझ गी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसे।

नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बिजोग विसर्जित रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुर वाक हिरदे हर निर्मल ना जम कान न जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवे प्रसंग जो तु पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बर नेफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नहीं घर बार निंदक गत नहीं काई रोस करे प्राभक्ष न मिटे नित नित चढ़े सुवा।

दुर्मत व्यापे जिन अंतर्म हो गुबारी, संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे साण परवारी, निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पगमाया तारी, संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी, यो प्रपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल तारी, हर एको सूत वर्त।

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरण वार धरणी तर पत राग परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हरद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समर्थ पल मुहूर्त प्रत्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण।

सबना उपावा सिर उपाओ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल सांत वसे, जप हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पावे गुणी निधान, हर सुखदाता मन वसे, होमे जाए गुमान, नानक नदरी पाई है, ता अनदन लागे ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया, मन सहजे जित्ता, ते जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता, अनदन हर के गुण रवे, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मित्ता, श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्रह्म कहिए, जी अनदन हर ले वलाए, सदगुर पुछे सच संजम कमावे, होमे रोच जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह, ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे होमे मेट समाए, नानक तिसनु मिलया, सदा सुख पाई है, जे अनदन हर नाम त्याए, महला तीजा, अंतर कपट मन अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए, कपट कीते हर पुख ना पीजे, नित वेखे सुने सुभाए, दूजे पाए जाए जग पर बुद्ध, बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा।

आए वह वह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वह वह पावे नानक वह वह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ न आवे पौड़ी हर जीव सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी सगुर ते सच पछाणीए सच सह समाणी अनदन जागे ना सवे जागत रहन विखाणी गुरमती हरस चाखिया से पुन पराणी बिन गुर किने ना पायो पच मुए अजाणी सलोक महला तीजा वह वह बाणी निरंकार है ते जेवड़ अव

तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिनमय बिदारेन, तेस साहिब की टेक नानक मने मागे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जागे पौड़ी, अकुल निरंजन पुरख अगम अपारिये, सचो सच्चा सच सच निहारिये, पूर्ण जापे किश तेरी धारिये, सबसे दे दातार जेत उपारिये, एकत सूद परोय जोत संजारिये, हुक्मे भवजल मंज हुक्मे तारिये, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जि भाग मथारिये, तेरी गत मित लखी ना जाए हौ तुद बलिहारिये। श्लोक महला पंजवा, जा तू तुस्से मेहरवान अचिंत वसे मन मागे, जा तू तुस्से मेहरवान नौनिध करमे पागे, जा तू तुस्से मेहरवान ता गुरका मंत्र कमागे, जा तू तुस्से मेहरवान ता नानक सच समागे। महला पंजवा, किती बहन बहन मुच वजाइन वज, नानक सच्चे नाम वेण किसे न रहिया लज पौड़ी, तुद ध्यान बेद कतेबा सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद ध्यान इंद्र इंद्रासना, शंकर बिशन अवतार हर जस मुख पणा, पीर पे कंबर शेख मसायक औलिये, ओत पोत निरंकार घट घट मौलिये, कूढ़ों करे विनाश धर्मे तगिये, जित जित लाए आप तित तित लगिये। श्लोक महला पंजवा, चंगियाई आलक करे बुरियाई होए सेर, नानक अजकल आवसी गाफल फागी पेर। महला पंजवा, कितिया कुटंग गुजा थिए नागित, नानक तैसे टकिया

बलाए मिटे अंदेसिया। इसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन के संग निहाल पापा मैल धोए। अमृत साचा नाव उथे जापिए, मन को होए संतोख भुखा त्रापिए। जिस कटवस्या नाव जिस बंधन काटिए, गुर प्रसाद किने विरले हर तन काटिए। श्लोक महला पंजवा। मन में चितवो चितवनी, उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आरो हर दियो नानक के मीत। महला पंजवा।

मन की कटिए मैल, साध संग उठिया जन मरण पौ कटिए, जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए शप, इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया, ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा, बार विडानड़े होमस तुमस कूका पईया राही, तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर फेटिया, होआ साधु संग फिर दुख न टेटिया, पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया, नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया, तत ज्ञान लाए ध्यान दृढ़ समेटिया, सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया, हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया, परख खजाने पाए से बौड़ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा, वेशो हुए जंबूर खवे न वंजन गाखड़े, जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच महला पंजवा, जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे, नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी। तेरे कीते कम तु देही गोचरे, सोई वरते जग जे किया तुद तुरे, बिस्म पै बिस्माद दे कुदरत तेरिया, सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया, तेरे हथ निदान भावे तिह देह, जिसनु होए दयाल हर नाम से लेहे, अगम अगोचर बेअंत

आमन जान रहे जन्म न तहा मर। साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सच समाया। शुद्ध अराग गुजरी भगता की बाणी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री कबीर जीओ का चौपदा कर दूजा दूजा, चार पाव दो सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंडल कई है। हर बिन बैल बेराने होई है, फाटे नाकन टूटे कदन, कोदो को पुस गई है रखाओ। सारो दिन डोलत बन मैया, अजो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो।

अंतरमाल निर्मल नहीं कीना बार पेख उदासी हिरदे कमल कड़ ब्राह्मण चीना कहे पया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रगाओ धर कर खाया पिंड बधाया खिंसा मुंदा माया ऊम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत् न पाया काए जपो रे काए तपो रे काए बलो वो पानी लख चौरासी जे न्यो पाई सो सिमरो निर्वाणी काए कमंडल कापड़िया रे अड़सड़ काए फिराही बत लोचन सुने प्राणी कण बिन गहो के पाही गूजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमर ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल बल औतरे अरीबाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमर ऐसी चिंता में जे मरे बेसवा जोन वल बल औतरे अंत काल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता में जे मरे सूकर जोन वल बल औतरे अंतकार जो मंदर सिमर ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत जोन वल बल औतरे अंतकाल नारायण सिमर

देत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सत

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा आम्यो हर अस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रे लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए। नानक पैम पै संत सरणी

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस,

गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चातरक हर बूंद मांगे जब जीवा हर घर चरना। अमे सरोवरो पियो हर घर नामा राम। संत संग मिले जब पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मनो ना बिसरै। आनंद अनदन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरै।

कोड अपराध परे ई तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण ते रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै

से पासे ती कर जाही। नरपत जान गयो सेवक सियाने राम, सर पर विछड़ना मोए पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला का अस्तित पाई है, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हौ हौ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

एमान यो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद खर्चे तोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई हांत कदे न होए नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उत वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप।

इंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुगद गवार, ओए जा आ डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी, सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कह पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने

मोरी रुण चुन लाया पैणे सावण आया तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया तेरे दर्शन विटो खनिए वन्या तेरे नाम मिटो कुर्बानो जा तू ता मैं मान किया है तुल बन केगा मेरा मानो चूड़ा पन पलंग सो मुंदे सन बागी सन बाहा एते वेस करेंदिगे मुंदे सौ रातो अवराहा नाम नियार ना चूड़िया ना से वंगड़िया जो से कंठ न लगिया जल से भाड़िया सब सैया सौ रावण गईया हो दादी कह दर जावा अमाली हो खरी सुचजी तैस एक न पावा माठ गुदाई पटिया परगे मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो विसूर विसूरे मैं रोवंदी सब जग रुन्ना हुरनड़े वनो पंखेरू एक न रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन हो पिरो विशोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल परे यार होए आए न सक्का तुझ कन प्यारे तेज न सक्का कोए आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए तय साहब की बात जे आखे कहो नान क्या दीजे शीश वड़े कर बैसन दीजे विण सिर सेव करीजे।

रुद्ध कित लग तरे संसारा, गुरमुख ज्ञान ते जुग अंतर चूके मोह गुबारा, सतगुर सेवा ते निस्तारा गुरमुख तरे संसारा, साचे नायर ते बैरागी पाइन मुख द्वारा, एको सच वरते सब अंतर सबना करे प्रतपाला, नानक इस बिन मैं अवर न जाना सबना दीवान दयाला, वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सत संजम

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुवार, नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन वसाया, वढ़हंस महला तीजा, हौ में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हमें जो सेवा ना हो गई कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ, होमे सब शरीर है, होमे ओपत होए, होमे वड़ा गुबार है, होमे विच बुझ न सके कोए, होमे विच भगत न हो वई हुक्म ना बुझिया जाए, होमे विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

एत उद देखो ओड़ तुम्हारी मोए निर्गुण गुण किसी न जाता। नानक साधु देख मन राता वढ़ांस महला पंजवा।

पंजवा सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ए रघाओ रतन जवाहर हर मान कलाल सेमर सेमर पे निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंत मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा विसरनाई प्रव दीन दयाला तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ जय चित आवे तो थान सुहावा जित वेला विस

प्रीतम भाई मैं मिलियो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सा वेदन जाने नित सुनावे हर कियां बातां। हम एक खेन तिस बिन रह ना सका।

अम्माली बिन फिर काम न आए जा से बात न पुछिया अम्माली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागणी अम्माली जिन सो रहा समाए होवारे तिन सुहागणी अम्माली तिनके धुआं सद पाए जिचर दूजा परमसा अम्माली तिचर मैं जाणिया प्रदूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु अम्माली ता आसा मनसा सा पूरे मैं सर्व सुखां सुख पाया अम्माली तेर सर्ब रहा पर पूरे जन नानक हर अंग माणिया अम्माली गुर सतगुर कै लग पैरे वढ़हंस महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्ची बाणी सच धुन

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की।

ब्राह्मणा सभ्यो पाइगन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देख, खसम पावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले, कर्म होआ तुर कदे, सब उपाइगने आप, आपे नजर करे, वढ़ांस महला पहला, करो दया, तेरा नाम खाना, सब उपाइगे आप, आपे सर्व सुमाना, सर्वे सुमाना आप तू है, उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना पेख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठ, एत परम फुलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम खाना, नाम तेरा है सच्चा सदा, मैं मन पाना, दुख गया सुख आए सुमाना, गावन सुरनार सुगड़ सुजाना, सोरनार सुगड़ सुजान गाव है, जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही, अहला जन्म गवाव है।

करवसा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला जिस

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडया ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वडयाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वस ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान गए बार वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सतगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्मड भागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम। लहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। लहा भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजिए जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार राम, कूड़ बोल बिग कामणी बहु वदे विकारा राम। बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाने बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है।

देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा सेवक पाए मिले वडपागी जिन गुर चरणी मन लागा कहो नानक हर आप मिलाए मिल सदगुर पुरख सुख होई गुर जेवड दाता मैं अबर ना कोई वढ़हंस महला चौथा हाँ गुरबेन खरी निमानी राम जग जीवन दाता गुरमेल सुमानी राम सदगुर मेल घर नाम सुमानी जप हर घर नाम तिहाया जिस कारण हों ढूंढ ढूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हों गुरबिन खरी निमाणी जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए राम तिन चरण सरेव हम लागे तिनके पाए राम हर घर चरण सरेव तिनके जिन सदगुर पुरख प्रत्याया तू वड़दाता अंतर जामी मेरी सरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आनंदन राम गुण गाए जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर घर नाम मेरा प्राण सकाई तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा हर घर कृपा करे सुखदाता गुरमुखे अमृत पीवा हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हर आपे पुरख निरंजन सोई राम हर आपे मिले करे सोई राम जो हर प्रा भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाण पलया न जाई तर थाके सबच तराई गुर प्रसाद जन नानक देखया मैं हर बिन अवर न कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई वढ़हंस महला चौथा हर सदगुर मेल हर सदगुरु चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सदगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना से सदगुरु सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरा से जिन कौ हर प्रा कृपा थारी ते सदगुर सेवा लाया हर सदगुर मेल हर सदगुर चरण हम पाया मेरा सदगुरु प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई राम हर नाम देव मेरा अंत सकाई राम हर घर नाम मेरा अंत सकाई गुर सदगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत कलत्तर कोई बेली नाही तिथे हर घर नाम छिड़ाया तन तन सदगुर पुरख निरंजन जित मिल घर नाम तिहाई मेरा सदगुरु प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई मेरा सदगुरु प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख न पाया राम तन नेपल जन्म सब बिरथा गवाया राम नेपल जन्म तिन बिरथा गवाया ते सागत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ पूखे पागीन घर दूरे हर घर तिनका दर्शना करियो जिनी हर घर नाम ना त्याया जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सदगुर करे भगती राम हर घर सदगुर करे भगती या हर प्रा कृपा थारे मैं गुरबिन अवर न कोई बेली गुर सदगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया।

सदगुर ज्ञान खड़ग हद तीना यम कंकर मार बिदारे हर प्रा कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाव संतापा सुन गुरमुख नाम सा बिनसे होमे पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत पए शरीरा अन दिन सह समाध कर लागी हर जपया गैर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पात्र तरे तराया सदगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम वढांस महला चौथा कोड़िया एक ओंकार सदगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाइया राम तन मानस जन्म पुन पाइया राम मान जन्म वड़ पुन ने पाया देसो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया हे देसो बाकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वड़ भागी पाई नाम सकाई जन नानक राम पाइया

ठाकुर माने से प्रधान ने हर से तीरंग राते हर से अघाए सह सुमाए घट कर मैया जाते से ही सज्जन संत से सुहिए ठाकुर अपने पाने कहो नानक जिन हर पड़ा डिटा तिन कैसल कुरबाने श्लोक दे अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया नानक सबल जिनम जय कड़ उठा सच तनी संत तिन खनिये वन्या जिन मेरा हर पड़ा डिठा राम जन चाह अगाने हार घर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्य बूठा सुख पाए दुख नास परम विनाश तन ते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहित विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिए वन्या जिन कड़ मेरा घर प्रभुटा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से ही कंडया नानक जाने सत साई संतना भारा शंत मिल जल जले खटा ना राम संग ज्योति ज्योत मिला ना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपे जानिए ते सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप आप वखाना नानक प्रम पै गुण बिना से मिल जल जले खटाना वढ़हंस महला पंजवा प्रभ करण कान सुमरथा राम रख जगत सगल देखथा राम समरथ सरणा जोग स्वामी कृपा निसुखदाता हाँ कुर्बानी दस तेरे जिनी एक पछाता वर्ण चिन्ह ना जाए लखया कथन ते अकथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कान सुमरथा ए जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम करता राम प्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बौड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जीत रे तू करता आठ पैर कर त्याई गए राम मन इच्छेड़ा फल पाई गए राम मन इश पाई गए प्रभ ते आई है मिटे जम के त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा घर घर त्याई है दर वाजे अनहद वाजे राम काट काट घर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बेराजे अगमे गोचरी उच्चा गुण बेअंत किश कह न जाई कोई न सके पहुचा आप उपाय आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख ना भगती दर वजे अनखद वाजे राग बढ़हंस महला पहला कार पंजवा अलहानिया एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाहो जिन जग तन दे लाया मोलत पुन्नी पाई परी जानी एड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए काया हंसती आवे छोड़ा जांदर पुन्ने मेरी माए जेगा लिखिया तेगा पाया जेगा पुर्व कुमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंडे लाया साहेब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पयाना इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यो मे माना काहे गर्व की जय जित सेवे दरगे सुख पाई है नाम से काली जय आगे हुक्म ना चले मूले सिर सिर क्या विखाना साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पे आना जोत पावे समृत सोथिए हिलड़ा यो संसारो जल थल मही रब रहा

मरण मुनसा सूर्य हक है जे होए मरे परवाणो नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो कीता वेखे साहिब अपना कुदरत करे बिचारो कुदरत बिचारे धारण धारे जिनकी या सो जाने आपे वेखे आपे बूझे आपे हुकम पछाणे जिन कछ किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो वढांस महला पहला दखणी सच सरंदा सच्चा जानिए सचड़ा परवदगारो जिने आपी ने आप साजिया सचड़ा अलाख्या पारो दोए पुल जोड़ विछोड़ियन गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजियन अहे निस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा दे प्यारो अरहाओ तो सिरजी मेदनी दो सुख देवन हारो नारी पुरख सिरजे बिख माया मोह प्यारो खानी बाणी तेरिया देजिया आधारो कुदरत तख्त रचाया सच नबेड़ नगारो आवा गमन थिरजिया तू थिर करने हारो जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो भूडड़े नाम सारिया बूडड़े क्या तुचारो गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बनजारो सदड़े आए तिना जानिया हुक्म सच्चे करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुकबदी सिरकारो बालक बिरत ना जाननी तोड़न खेत प्यारो नाउदर ठाके हुक्म सच्चे हंस गया गैनारे सातन छुट्टी मुट्ठी झूठ विदनिया मितकड़ा अंगरड़े बारे सुरतमुई मरमाइये मैरुनी दरबारे रोवो कंत मिखे लियो सच्चे के गुण सारे जल मल जानी ना भालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानिए तेरे सचड़े खेत प्यारे तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी तंदे तामणिया तेरी छोड़ी विदन कार कर कर कंत महेलिया रूड़े गेत प्यारे मैं तेरे सच सराहना हो रैसेड़ी ना पतारे गुरमिलिया वेस पलटिया सातन सासी गारो आवो मिलो सहेली हो सिमरो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागणी सच सुवार नहारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वढांस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिए कड़ कड़ शब्द पछाणो वा

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए।

पख खिस फिर रंग राता सो सच्चा चोला तिद पैदे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब सबदू ऊचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर फूली अवगणियारे मैं सदा रावे तेरे अपना सचड़े शब्द विचारे।

पौड़ी तिस गुर को हों वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई तिस गुर को सद बलिहारणे जिन हर सेवा बणत बनाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू लै छड़ाई।

तू करण कारण समर्थ है सह सृजनहारे जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

ना जानई अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझण हार। मूर्ख आप गणाए दे मर जमे हुए खुआर। नानक

की खबर ना पाई, अखी मीड चलिया अंधेरा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गोविंद परम ना पागै सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वेड़ाना जल थल।

तुझ की मन राते आयनस प्रभाते हर रसना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द पेद फुन साचे आयनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दिसे किस साला ही इसे शरीक न कोई प्रमत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना त्रिकाल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो ना त्रिपाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान ना त्रिरूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ ना त्रिमात पिता सुध बंधव ना त्रिकामना नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचाचारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों साकत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए हर सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाईगे सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

पाई गुरमुख पाए घर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई पल्ले किशु न पाए। गुर मिले नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई। गुर के खेत अपार आया सो परवान है पाई जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई गे पाई गुर सब दी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला ती गुणी तिरपुण व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए। राम नाम लग छूटिए पाई पूछो ज्ञानिया जाए। मारे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जू तेरे मन वसै पाई सदा हर के गुण गाए। रखाओ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई हृदय रखिया उरतार। गुर सरणाई उबरे पाई राम नाम लिव लाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला सदगुर सुख सागर जग अंतर होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सदगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए।

आपे अंडज जेरज सेत उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे सोए।

सब जगह मछली हर आपे, आप पुल न पुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाइंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हारस तापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निदान।

प्यारा, आपे शब्द समाहा, आपे लिखने आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन आनंद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे

तो के गुर गोविंद सलाहिए पाई मन तन हिरदे तार ताचा साहिब मन वसे पाई एहा करनी सार जित तन नाम ना उपजे पाई से तन होए शार सा संगत को वारिया पाई जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना पाई जेते सब किश होए गुर पूरे जानाया पाई बिन अवर ना कोई रहाओ नाम होने पचमोए पाई गणत न जाए गणी विण सच सोच न पाई गे पाई साचा अगम तनी आमन जान न चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरम कोड उधार दा पाई दे नावे एक कणी सिमरत सास्त सुध्या पाई विण सतगुर परम न जाए आनक कर्म कर था क्या पाई फिर बंधन पाए प्यारे कुंडा सोधियां पाई विण सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम त्याए सच सदा है निर्मला पाई निर्मल सचे सोए नदर करे जिसे अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोड़ मदे जन पाई गे पाई विरला कोई कोए नान करता सच नाम पाई तुण मन तन निर्मल होए सोरठ महला पंजवां दो तुके जाओ लो पाओ अपाओ यो मान तौलो मिल न दूराई आने अपना करत बिचारा तौलो बीज बिखाई माधवे ऐसी देव बुझाई सेवो साध गहो ओढ़ चरना न बिसरे मोत चसाई रहाओ रे मन मुगद अचेत चंचल चित तुम्हें असीर दे न आई प्राण पा त्याग आन तू रचया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुध पाई साहिद काबक ना इउ जानो जैसे पवन चुलाई कोड़ पराध अशाद्यो इहो मान कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवां पुत्र कलत्र लोगरे बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा न होसी सामिथिया असने ही रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संज्ञा कर देही तीनी जल कुकर पसमेही होए आमरो ग्रे में बैठा करण कारण बिसरोही अनक पान कर मणिये साजे काचे ताग परोही तूड़ जाए गो सूत बापरे फिर पाशे पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तेस त्यावो देन रहने ही जन नानक प्रभु कृपा तारी मैं सतगुर ओट गहे ही सोरठ महला पंजवां गुर पूरा पेटू वडभागी मने पया परगासा होए न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार है आगे सुख पाछे सुख सहजा कार आनंद हमार है रहाओ अंतर जामी करने हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधार सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो मनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सगले दुख बिनासे सोरठ महला पंजवां सुखिये को पेखे सब सुखिया रोगी के पाने सब रोगी करण कराम हार स्वामी अपन हार संजोगी मन मेरे जिन्हें अपना परम गवाता जिसके पाने कोई न पूला तिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ संत संग जा का मन शीतल ओ जाने सगली ठंडी होमे रोग जा का मन व्यापत ओ जन्म मरे बिल लाती ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया ताको सर परगासा अज्ञान अंधेरे सू सनाही बहोड़ बौड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक इहो सुख मंग है।

एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन दियो दिखाई, सुन मीता तूरी कौ बल जाई, यो मन तेरा पाई रहाओ, पा मलोवा मल मल तोवा, यो मन ताए को दिशा, सुन मीता हो तेरी शरणाई आया, प्रा मिलो दियो उपदेसा, मां ना कीजे शरण परिजे, करे सो पला मनाईए, सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजे, क्यों दर्शन हर जियो पाईए, पयो अनुग्रह प्रसाद संतन कर।

ना सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ते नर त्रिसंत रखाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिसरे मेरा राम स्नेही जिस लाख बेदन जन आई रखाओ जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुगे प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक घोर में परया जित को लाया तित घी लागा ते सो ही वरतारा नानक सह पगरी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो त्यों हर नरचे ज्ञानी हर जन को ई सुहावे पेड़ निट कर सेवा सदगुरु

प्रसंत से हितकारी, विद्या में विद्यंसी रतिया, नयन देख सुख पावे, जैसे रसना साध लुभानी, त्यो हर जन हर गुण गावे, जैसी भूख तैसी कापूर, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रा मिलिया अंतर जामी, सोरठ महला पंजवा, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर दिशा रहाओ, तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देओ मेहरवाना, तुम करो भला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम ए हवाला, राग संतन कै पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माद गर्भ में आपन सिमरन दे, तय तुम रखन हारे, पाग साग अथा लहर महें,

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी।

हमारी ओर सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखे आपाई, यो मन तेरा पाई रखाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हमलाहा खाटिया, हर भगत परे पंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करे गो, जो वाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद पये सुख पाया, संतन कह परसादे, कहो नानक हरसो मन मानिया, हरंगर ते विसमादे। सोरठ महला पंजवां, जेती समगरी देख।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रखाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना ता मैं सुख नहीं पाईए हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाईए काल न पाने अंतर विध जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांझत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम

गुर गोपाल प्रसोई जा की शरण पया सुख पाई है बहुत दुख ना होई रहाओ। वड़ पागी सासंग परापद तिन पेट दुर्मद खोई तिन की तूर नानक दास बांछ है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवार है सूका मन साधार है दर्शन पीड़ित होत निहला हर का नाम विचार है मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देव है काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा अपना दास हर आ

हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हा दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान, साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सुरपूरे, होई सर्व कल्याण, रहाओ जीओ पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान, अपने दास की आ पैज राखी, नानक सद कुरबान। सोरठ महला पंजवा, दुरत गवाया घर प्रव्या पे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरद सुमारिया, होई राजे राम की रखवाली, तोख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली रखाओ। पतत उदाहरण सदगुर मेरा, मुत का परवासा, बगसलय सर सच्चे साहेब, तुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा, बगस्या पार ब्रह्म परमेसर, सगले रोग बेदारे, गुरपूरे की सरणी उबरे, कार्य सगल सवारे, हर जन सिमरिया नाम आधार, ताव्यो तारिया सदगुर पूरे, अपनी कृपा तार रखाओ। सदा आनंद करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच सब सद पाखिया। सोरठ महला पंजवा, भय किरपाल स्वामी मेरे, ते साचे दरबार, सा गुरताप गुआया पाई, ठांड पई संसार, अपने जी जंत आपे राखे, जमे की हटतार, हर के चरण हृदय उरतार, सदा सदा प्रभु सिमर गे पाई, दुख किल कटन हार, रहाओ तिस की सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, कारण कारण समरसो पाई, सचे सची सोए, नानक प्रभु ते आई गे पाई, मन तन शीतल होए। सोरठ महला पंजवा, संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रा विसरो नाही, मन चिंदे अड़ा फल पाई, रहाओ सब गुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा थारी, पार ब्रह्म प्राप है दयाला, दुख मिटिया सब परवारी, सरबन दान मंगल स्वरूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेसर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सदगुर हवाला होआ, तार कृपा प्रभात दे राखिया, हर गोविंद नवा नरुआ, राव ताप गया प्रभ आ मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगते सा फल पाए, सदगुर कह बल जाय, हलत पलत प्रभ दो में सवारे, हमारा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सख्त के किए, सोई संसगाई, अपने सेव किया पे रख, पूर्ण पई बढ़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्ब दयाल, रहाओ अनदिन नानक नाम तिहाए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए रख, ज्यों बारग पित माता। सोरठ महला पंजवा, कार तीजा चौपदे, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, मिल पंचो नि सहसा चुकाया, सिगदारो न पति आया, उमरावो आगे तेरा, मिल राजन राम नबेरा, अब ढूंढन कतो न जाई, गोविंद पेटे गुर गोसाई, रखाओ आया प्रभ दरबारा, ता सगली मिट्टी पुकारा, लब्ध अपनी पाई, ता कत आवे कद जाई, ते साच न्याय नबेरा, ऊखा समठा गुर समचेरा, अंतर जामी जाने, बिन बोलते आ पछाने, सर्व थान को राजा, ते अनहर शब्द अगाजा, तिस पै क्या चतराई, मिल नानक आप गवाई। सोरठ महला पंजवा, हृदय नाम साए हो, कर बैठे गुरु त्याय हो, गुर पूरे सद कहया, सो सुख साचा लहया, अपना होयो गुर मेहरवाना, आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों, कर आए कर स्नाना, रहाओ साची गुर वड्याई, ताकि कीमत कह न जाई, सिर साहा पातशाह, उर पेड़ मन ओ माहा, सगल पराज लाथे, मिल साह संत कै साथे, गुण दान हर नामा,
ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ, ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਫਸਟ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰਾ, ਨਾਨਕਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਲਾਥੇ। ਤੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਅੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਭ ਪਾਏ, ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਤਿਆਈਏ, ਆਨ ਦਿਨ ਸੁਕਰਤ ਕਰੀਏ ਰਹਾਓ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਿਡ ਪਾਗੀ ਪਾਏ, ਹੋੜ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਸਤ ਕਰੋ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਵੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਪਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੀ, ਬਿਘਨ ਮਿਰਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਪਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਕਰ ਆਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ, ਕਰ ਲਸਕਰ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਭ ਜੀ ਪਏ ਦਇਆਲਾ, ਜਾਪ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਪਉ ਕਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਰਣਾ, ਪਰਹਾਉ ਤੇਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਹਿਰਦੇ ਮੁਰਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ, ਬਾਲ ਤਨ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਉਠਾ ਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਤਰਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਹਦੀਆ, ਫੁਲ ਖੇਮ ਸਾਵਤੀਆ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਗਾਈ, ਸਭ ਉਠਲਾ ਗੀ ਪਾਈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਈਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਗ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ, ਪ੍ਰਾ ਮਿਲਿਓ ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਤਾਂਗਲ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਓੜ ਸਤਾਣੀ,

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रहिया पूरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सुधार खवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवा गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा पा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्य सगल सुवारे हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पादत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सा संग मिल त्याई है मान बांछित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रोम आयो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो पांबीरी के पाद पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक होम में पीत गुर खोई तौ दयार बीठ लो पायो तब रहो अंधेश्वरो मायो जो चाहत सो गुरु मलायो सर्व

शीतला ठाक रखाई बिघन गए घरनाई। मेरा प्रभु वसदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की, थव जी भया कृपाला रहाओ प्रभ करण कारण समर्था, हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती। सब नानक सुख सुवंती सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु त्याए मिल कुशल स्थिति कर आए।

हारे राख पैज नाम अपने की करन करा मनहारे। प्रभ जियो खुशमाना कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार सुमरा स्वामी बंधन काड सुवारे पैर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा जी जन सबस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने भवन दर पारे उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे।

ए जानो भजन राम को सही, फिरत बहुते जुगहार्यो मानस दे लही। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नामा। मान रे कौन कुमा तैलीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो।

कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमर हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और धर्म ताके सब नाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई, सोरठ महला नाम माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण राख लिहो सरनाई, सोरठ महला नाम माई मन मेरू बस नागे, निस्बासर विखेन को तावत हे बिदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यो बिरथा जन्म सिरावे, मद माया के पयो बाबरो तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन ताको मर मना जाना, जबगी शरण साध की आयो दुर्म सगल बिनासी।

सुआन पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर नज पोखयो पस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पह नहीं जा कह संचन माटी मान है रगाव नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग गए।

सहज पियाई, दुबधा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई, सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुकसदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई, अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पवन पत नामंग, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग, कर्म सुकर्म कराए आपे आपे पवित्र रामंग, मान मुख जूठ लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग, जिन क्या कह से साध जानन, ज्यो गुंगे मिठे आई, अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई, गुरदाता मिले तामत होवे, निगुरे मत ना काई, ज्यो चलाए त्यो चले पाई, होर क्या को करे चतराई, एक परम पुलाए एक भक्ति राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेगा फल पाया, धुंग चला मनहारा, सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम अधारा, गगनंतर वास्या गुण परगासया, हुण मैं ज्ञान त्यानंग, ना मन पावे कह कहावे, तत्तो तत्व खानंग, सतगुर पीरा गैर गंभीरा, बिन सबदे जग बौरानंग, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानंग, तोरठ महला पहला तेतुकी, आस्था मनसा बंदनी पाई, कर्म तर्म बंदकारी, पाप पुन जाया पाई, बिन से नाम सारी, हे माया जग मोहनी पाई, कर्म सबे वेकारी, सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजे पाई, तो आत्म तत्व विचारी रघाव, सात वेद बके खड़ो पाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल न चूके पाई, अंतर महल वकारी, इंद डूबी माकुरी पाई, ऊंडी सर कै पारी, दुरमद कणी विभूति पाई, दूजे पाए खुवाई, बिन सतगुर नाम न पाई गे पाई, बिन नामे परम न जाई, ता गुर सेवे ता सो पाए पाई, आमन जान रखाई, साच सहज गुर ते उपजे पाई, मन निर्मल सा सुमाई, गुर सेवे सो बूझे पाई, गुर बिन मगना पाई, जे अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिखाई, पंड दही वलोई गे पाई, विचो निकले तत, जल मतिये जल देखिए पाई, त्यो जग एहावत, गुरम परम गुचिये पाई, कड़ कड़ दियो अलख, त्यो तागो सूत को पाई, दैत से बंद उमाए, बिन गुर गांठना छूटी पाई, ताके कर्म कमाए, त्यो जग परम पुलाया पाई, कहना किशु न जाए, गुर मिले पाओ मान मस्ते पाई, पाए मरना सच लेख, मजन दान चंगे आईया पाई, दर गए नाम सेख, गुर अंकस जिन नाम दरड़ाया पाई, मन वसिया चूका पेख, यो तनहार सराव को पाई, वखर नाम अपार, यो वखर वापारी सो दृढ़ पाई, उर शब्द करे विचार, धन वापारी नान का पाई, मेल करे वापार, सोरठ महला पहला, जिन्नी सतगुरु से व्याप्यारे, तिनके साथ तरे, तिना ठाक ना पाई प्यारे, अमृत रसन हरे।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, एक उत्तम पृथ्वी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए, जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल साजन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, तब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसरे, से हर जन पूरे सही जान। जो गुरम हर आराध दे, तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो, तुत्यां गई विखाए। तगुर का शब्द सुनना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा, जो गुर कारना कमाए। जगत जलंदा डिठ मैं, हो मैं दूजे पाए। नानक गुर शरणाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सब दरते हो मैं गई, तो बावंती नार। तिरके पाने सदा चले, ता बनया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई, गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गोप्या अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करो, पापिष्ट हत्यारी। ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन, ज्यो धरकट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया, काले का किश ना बसाए। हर सेती मन रब रहया, सच्चे रहया समाए। नानक हो बलिहारी तिन को, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। तिन सबदे शुद्ध न होवई, जे अनेक करे सीगार। फिर की सार न जाने, दूजे पाए प्यार। साक शुद्ध साक लखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जपदे हर घर दिन सरात, तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेल्या सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दर्शन स्यो प्रीत है, हर दर्शन को मित। हर दर्शन के वस है, जो जंती कह वस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो ने हो। कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में वरसे में हो। जो हर दर्शन की उस्तद है, सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई पाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याय दा,

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुका।

नाद सुमायलूरे सब गुरु पीटली दीवार गाव जय चिल मिलकार दिसंता ते अनघा शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसाद दी जानी रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही नेरे नाही दूर निज आत्म रहा पारपूर जय अनघा सूर उजियारा ते दीपक जले संचारा गुर प्रसाद दी जानिया जन नामा सहज समानिया कार चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान सुवाई हो तो पै दुगुनी मजूरी देहो मोको बेडी देहो बताई हो री बाई बेडी देन ना जाई देख बेडी रहो समाई।

तोरै तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बन ना सको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहन ना जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई।

रु राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पे हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुर पर चिंता मन काम तीन बस जाके। चार पदार्थ अजत दिशा सिद्ध नवृद करतल ताके। हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही। व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाज उपात रहित फुन बड़े पग लिव लागी। कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पर...

तौ हम बाती, जौ तुम तीर्थ तौ हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फंस, भगत हेत गावे रविदास। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा। चमरटा गांठ न जनई, लोग ठावे पनही। अरहाओ आर नहीं जे तोपो, नहीं रामबी ठाओ रूपो। लोग गंठ गंठ खरा बेगूचा, होंवर गंठे जाए पहुचा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जमसो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत भीखन की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। नैनो नीर बहे तन कीना, पए किस दुधवानी। रूदा कंठ शब्द नहीं उच्चरै,

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोग छिपाइए पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चित न किया कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना, जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए ता पत रह आराखे जा सोए। जय देखा तै रया समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुन उठ चलना मोत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए। रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार साची बाणी सो तरे प्यार। ताको पावे मुख द्वार जब तब सब इहो सब जगह सार। तनासरी मोहल्ला पहला जियो तप्त है बारो बार। तब तब खावे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए। बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोए। रहाओ जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात। जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पावन आखे सब जाए। जेता मो प्रीत स्वाद सभा कालख दा गादा दाग दोष मुझ चलिया।